0: गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो चलो फेवरेट गानों का टाइम आ गया है। डायल करें अपने नंबर पर 0474293111 पर। दोस्तों एक गाना, एक कॉल और ढेर सारी, और रेडियो पर अपनी फेवरेट गाने बजने की, वो भी कॉल करने के बाद, वो खुशी तो अलग है दोस्तों। तो चलिए जी इस खुशी को मेरे साथ, डायल करें 0474293111 पर, 0474293111 पर। और आज के पहले कॉलर हमारे ऑलरेडी लाइन पे आ चुके हैं, देखते हैं कौन और कौन सा फेवरेट गाना लेकर आते हैं। हेलो,
1: नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बात करे और कहाँ से?
1: जी मैं स्टीव बोल रहा हूँ, स्टीवन।
0: स्टीवन, ओके स्टीवन जी, कैसे हैं आप?
1: पहले एक बार मैंने कॉल किया था।
0: ओके,
1: और एक गाना चाहिए थे हम लोग के लिए।
0: कौन सा वाला?
1: तुमसे अच्छा कौन है फिल्म के, आके है बरी बरी, वो गाना।
0: बहुत खूबसूरत गाना है ये, आँख है भरी भरी।
1: मैं थोड़ा काम में हूँ।
0: कोई नहीं कोई नहीं, ओके। तो फिर टेलरिंग करते करते ये प्यारा सा गाना तो बनता है
1: जी। सबके लिए हम लगाते हैं गाना।
0: ओके, और अगर सब मुझे आपके यहाँ पे सुन रहे तो सबको मेरा नमस्कार।
1: थैंक यू जी।
0: ऑल राइट, तो चलिए सुनते हैं आपका ये फेवरेट सा गाना, वो भी 107.8 पर। आंख है भरी भरी और तुम दिल लगाने की बात करते हो।
2: आंसू पी के भी जो मुस्कुराए वही तो जमाने को जीत पाए।

0: तेरे मिलने से पहले हो गए।
1: ओके डन, आपका
0: वही गाना था चाहिए,
1: यही गाना आपको मिलेगा। वैसे आपका नाम क्या बताया दोस्त?
0: मेरा नाम है प्लासिड, है प्लासिड रिचर्ड।
1: ओके तो चलिए फिर आपका ये फेवरेट गाना बजा देते हैं। कॉल कर
0: मेरा अच्छा गाना मेरे को सुनने चाहिए था
1: जी। अभी
0: बहुत पहले सुना था, अभी तो याद आया उसका,
1: अभी फिर से सुना देंगे। तो चलिए सुनते हैं, कॉल करने के लिए शुक्रिया। कीप लिसनिंग, प्यार भरी आवाज और आपका दिन शुभ हो।

0: वाओ, बहुत ही खूबसूरत, समय से ऐसे आँख बंद करके ये गाना सुन रही थी। कितने खूबसूरत बोल है इसमें, इतनी खूबसूरती से अपने प्यार का इजहार किया है। और वो प्यार जब उसमें बोला है कि दो दिन तेरे बिन, मतलब इतना खूबसूरत सा लग रहा था ये गाना। सच में मेरे दिल को तो सुकून दे गया। आशा करते हैं आपके भी दिल को ये खूबसूरत सा गाना सुकून दिया होगा। कुछ गाने वक्त के साथ और भी अजीज लगते हैं, पता नहीं, लाइक मतलब मेरा इनर फीलिंग है ये। मतलब इतना खूबसूरत सा गाना था ये। बस इस गाने में मैं महसूस कर पा रही थी कितने सुंदर बोल है। और फिर तो चलिए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ और अगले दोस्त की तरफ, देखते हैं कौन और कहाँ से है। हेलो,
1: हेलो, नमस्ते जी।
0: नमस्ते, कौन बात कर रहा, कहाँ से?
1: शिबिन तामरकुलम से।
0: नमस्ते शिबिन, कैसे हैं आप दोस्त?
1: डबल ठीक है।
0: डबल ठीक है आपसे और चार गुना।
1: डबल ओके।
0: तो आज कौन सा गाना सुनेंगे मेरे दोस्त?
1: मैं बोल रहा हूँ गाना पाना मेरे हाथ में।
0: कौन सा वाला?
1: मेरे हाथ में।
0: मेरे हाथ में, ओ मेरे हाथ में तेरा हाथ हो।
1: यस
0: यस।
1: मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारे जन्नत मेरे साथ हो, तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो
0: हो जाओ फना।
1: नो फना, जाओ फना
0: जी। ऑल राइट, वैसे आपका दिन कैसे जा रहा है?
1: ओके ओके
0: ओके देन
1: जी सर,
0: थैंक यू फॉर कॉलिंग। प्यार भरी आवाज। तो सुनते हैं ये खूबसूरत सा गाना जिसे गाया है सोनू निगम और सुनिधि चौहान ने। बहुत ही खूबसूरत सी मूवी है दोस्तों, और ये खूबसूरत सा गाना मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, जिसे ऑल्सो अच्छे से शूट कर किया है। बहुत एक मतलब सीनरी उस गाने में इतनी खूबसूरत है, सेम एज सेम टू सेम गाने की तरह। तो चलिए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गाना जो दिल को छू जाएगा। ओनली ऑन 107.8 पर प्यार भरी आवाज आरजे आकांक्षा के साथ।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: जैसे ही मैंने ये गाना सुन जैसे मैं ये गाना सुन रही थी, ये गाना मुझे एक ना मेमोरी में फ्लैशबैक मेमोरी में लेके गया। करीब 10 साल के पहले ये जब मूवी रिलीज़ हुई थी, तो मैं एक शहर में घूमने गई थी, नांदेड़ शहर में। तो वहाँ पे ना गुरुद्वारा गई थी मैं घूमने के, मतलब दर्शन करने के लिए। और वहाँ पे ये मूवी आई थिंक वो सेम डे वो रिलीज़ होने वाली थी। तो मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा, माई गॉड, क्रेजीएस्ट एक्सपीरियंस एवर। अब पहले बहुत ही ये फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाली जो फन, जो एक्साइटमेंट होती है, वो मैंने लिटरली जी है। क्योंकि इतना ये मूवी पॉपुलर है 10 साल पहले, मतलब अभी भी अगर आप देखते हो तो बहुत खूबसूरत सी मूवी है, बहुत खूबसूरत सी स्टोरी है। और जब इतना ये फुल हाउस जा रहा था, और फिर मतलब टिकट खरीदने के बाद भी सीट कुछ लोग जो ब्लैक में जब टिकट बेचते थे, तो वो कुर्सी डाल के, एक्स्ट्रा कुर्सी अपनी वो प्लास्टिक की रहती है, वो कुर्सी डाल के लोग फिर भी आ रहे थे मूवी देखने के लिए। तो एक हाउसफुल पिक्चर और देखने का जो थिएटर में सबके साथ जो मज़ा होता है, हर एक मूवी पे तालियां, डायल, विसल्स एंड एवरीथिंग। सो इट वॉज़ रियली फन मोमेंट। बट आजकल ऐसा इतना नहीं होता है। तो या ये मेरा लाइक फेवरेट मूवी मेमोरी था इस मूवी से। तो चलिए फिर एक छोटा सा ब्रेक का टाइम आ गया है। यू गई और यू आई, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं फिर से।
2: ആടിമാസം വരവായി, റിയൽ ആടിമാസവും വരവായി.
3: ആടിമാസം ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ?
2: ആ ആടിമാസവും ജോളി സിൽക്സിന്റെ റിയൽ ആടി സെയിലും ഒന്നേ ഉള്ളൂ. വാങ്ങുമ്പോ പുതിയ കളക്ഷൻസ് തന്നെ വാങ്ങണം. ഇവിടെ എല്ലാം മാർക്കറ്റ് വിലയേക്കാൾ കുറവ്.
4: കാഞ്ചിപുരം, ബനാറസി, ഡെയിലി വെയർ സാരികൾ, കുർത്ത, കിഡ്സ് വെയർ, ചുരിദാർ മെറ്റീരിയൽ, വെസ്റ്റേൺ വെയർ, മെൻസ് വെയർ. വിലോ 999.
5: ജോളി സിൽക്സ്, കൊല്ലം, തിരുവല്ല, കോട്ടയം, അങ്കമാലി.
1: ये है प्यार प्रिय आवाज, वेलकम बैक टू द शो। और मैं हूँ आपकी दोस्त होस्ट आरजे आकांक्षा। तो अपने फेवरेट गाने मेरे साथ, दोस्तों सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ सुनने के लिए डायल करें 0474-293-1111 पर, 0474-293-1111 पर। मिलते हैं अगले दोस्त से, कौन और कहाँ से है। हेलो।
6: हेलो,
1: गुड मॉर्निंग।
6: गुड मॉर्निंग मैम।
1: ये कौन सी, किसकी प्यार भरी आवाज है ये, कौन बात कर रहे हैं?
6: गिरिजा है।
1: नमस्ते गिरिजा जी, कैसे हैं आप?
6: ठीक है।
1: क्या करते हैं?
6: हाउसवाइफ है।
1: ओके।
6: मैंने बुलाया ना, मेरा बच्चों का जन्मदिन था जून

0: 20 तारीख को।
1: 20
0: वो तो चले गए, हो गए।
1: ओके, कहाँ पे आपके बच्चे?
0: दो बेटी,
1: हाँ
0: 20 तारीख तो मेरी बेटी का भी, उनके बेटे का भी, दोनों का 1 तारीख था।
1: ओके, तो आप उनको बर्थडे सॉन्ग डेडिकेट करना चाहती है?
0: अरे वो है।
1: ओके, तो कौन सा गाना आपने बताइए?
0: मैंने सुना है, मैंने सोचा मैं वो गाना तो भूल गई, वो मेरे आंखों के तारा है तू,
1: चंदा है तू, ओ वाह,
0: ओ मेरे सूरज है तू, ओ मेरे आंखों के तारा है तू, वो ही गाना है।
1: जीती हूँ मैं बस तुझे देख के, इस टूटे दिल का सहारा है तू। कितना खूबसूरत सा गाना, और ये सबसे मतलब एकदम क्यूट और बेस्ट गाना है अपने बच्चों को डेडिकेट करने के लिए, फॉर श्योर। क्योंकि मैं जब
0: बेटे का दोनों की एक महीना, ये 20 तारीख को है।
1: जी डेफिनेटली, ये गाना आपके बच्चों के लिए। आपके बच्चों का नाम क्या है?
0: मेरा बेटी का नाम प्रिंसी है।
1: प्रिंसी
0: वो काम करती है SBI में।
1: ओके,
0: बेटा उनका बेटा अथर्व तक लोग,
1: अथर्व
0: 8th क्लास।
1: ओके, तो ये बड़ा ब्यूटीफुल सा गाना जिसमें ढेर सारा प्यार है, अपनी ढेर सारा अपनी माँ का प्यार है। तो ये गाना है प्रिंसी के लिए और अथर्व त्रिलोक के लिए, ओनली ऑन 107.8 पर प्यार भरी आवाज। वैसे ये गाना सुनते ही, मतलब ये गाने जब रिक्वेस्ट आया तो मुझे भी और एक याद आया कि ये गाना हर एक अपने माँ बाप अपने बच्चों को डेडिकेट करते हैं। जैसे मेरी माँ और मासी मुझे ये गाना गाते थे जब मैं सोना चाहती थी रात में, मतलब सुलाने के लिए लोरी तक की तरह। ऑल राइट, थैंक यू फॉर कॉलिंग गिरिजा जी, और ये गाना रहा आपके बच्चों के लिए, खूबसूरत सा, ओनली ऑन 107.8 प्यार भरी आवाज। कॉल करने के लिए शुक्रिया।

0: खूबसूरत सा रिश्ता जहाँ प्यार की कोई शर्त नहीं दोस्तों, सिर्फ दुआएं होती है। माँ की ममता हो या अपने पेरेंटहुड के बच्चे के लिए प्यार, उससे खूबसूरत एहसास कोई नहीं है इस दुनिया में। इस गाने को सुनने के बाद बचपन में माँ की गोद का वो सुकून और वो ढेर सारी यादें याद आ जाती है। लता दीदी की वो खूबसूरत सी आवाज़, ममता की मिठास, वो हर दिल को छू जाती है दोस्तों। हर बच्चा अपने माँ बाप के लिए चंदा है और चांद है, तो भी सूरज उनकी पूरी दुनिया है दोस्तों। अगर मुमकिन हो तो अपने माँ पापा को एक बार कॉल करके ज़रूर बताना थैंक यू। कभी कभी यही दो शब्द उनके लिए एक तोहफा बन जाते हैं। आप सुन रहे हैं प्यार भरी आवाज़ आज ही आकांक्षा के साथ, प्यार भरी आवाज़ मेरे साथ। और चलिए मिलते हैं अगले दोस्त से, डायल करें 0474293111 पर, मौका पाइए अपने फेवरेट गाने सुनने का मेरे साथ। मिलते हैं अगले दोस्त से। हेलो, गुड मॉर्निंग, कौन बात कर रहे हो, कहाँ से दोस्त?
1: देवदास बात करते हैं। देवदास
0: जी कैसे हैं आप?
1: आराम से, कैसे आराम से? सही बोला था सब, माँ बाप को एक फोन करने के लिए बोला था।
0: जरूर करना चाहिए, और जब तक वो हमारे साथ जिंदा है जरूर शुक्रिया कहना चाहिए, उनका हाल चाल पूछना चाहिए। उनको हमसे और कुछ चाहिए ही नहीं इस दुनिया में, बस हमारी खुशी और दुआ बस।
1: लेकिन सबको फोन करेगा तो माँ बाप को पूछ जाने वाला बहुत है यार
0: जी।
1: तो सबको फोन करके तमाशा बोलते है, सब कुछ बोलेगा, लेकिन माँ बाप को साल में भी फोन करने वाला बहुत है। हम विदेश राष्ट्र में रहने के टाइम बहुत आदमी का पूछा तुम्हारा,
0: बट पता है देर नहीं, मतलब इसी हर मतलब ऐसे नहीं कि हो गया, कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, बाद में भी, बट करना चाहिए। ऐसे नहीं कि कर नहीं सकते, कर नहीं किया, ऐसे कुछ मतलब बात को ऐसे ना, हाँ फायदा ही नहीं, बट अब
1: लेकिन ऐसा रहना मानते आदमी लोग, दिल से हम लोग को पाल के बड़ा होने के बाद किधर भी भेजने के बाद वो लोग इतना कष्ट से हम लोग को बड़ा करने के लिए इतना तकलीफ से, वो लोग अच्छा पेट में खाना भी अच्छा देता नहीं है, फिर भी बच्चा लोग के लिए पालते, बच्चा लोग के लिए पढ़ने के लिए वो भागते, रिस्क भी नहीं है, काम करते हैं कुछ करने
0: उनके पास, अगर वो खुद के लिए नहीं, अगर एक तोहफा या कुछ मैंने तो देखा है अपने, जब स्कूल के टाइम आते हैं बच्चों के लिए नए शूज लेना है, उनको ये फर्क नहीं पड़ता है कि उनके शूज उनके चप्पल फटी है या, बट बच्चों ने सब नया चाहिए। तो इतना खूबसूरत सा ये जो एहसास है माँ बाप के अलावा आपको जिंदगी में कोई नहीं दे सकता, ये ढेर सारा प्यार।
1: हम लोग भी, हमारे बच्चे भी होने का, बड़ा होने के बाद हमको भी ऐसा करने का, इसके लिए हमारे माँ बाप को ना ज्यादा तुम कुछ नहीं करने का जरूरत नहीं है, लेकिन उसको पूछना मांगता कैसा है, तबीयत कैसा है, कुछ ना कुछ सब देना मांगता है।
0: हर इसमें छोटी छोटी खुशियों में
1: बच्चा लोग बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल से वो लोग क्या बोले का फायदा नहीं है। ओके, हमारा गाना बोले,
0: हाँ बताइए।

0: ये गाना डालो,
1: ये गाना
0: भूल गया था।
1: कोई नहीं, ये गाना आपको याद दिला देंगे और ये गाना डाल दिया है।
0: थैंक यू सो मच आकांक्षा। आकांक्षा कैसा है? बिल्कुल सही है ना?
1: एकदम बढ़िया।
0: थैंक यू सो मच। ओके,
1: आप भी ठीक है? आप तो
0: हाँ
1: लग ही रहे
0: रिलैक्स
1: हो
0: है।
1: ठीक है, बढ़िया हो। चलिए।
0: हम भी सही है, मौसम भी सही है आज।
1: ओके, तो इसी सही मौसम के साथ सुनते हैं ये आपका फेवरेट गाना। कॉल करने के लिए शुक्रिया। ये सुनेंगे गाना ओनली ऑन प्यार भरी आवाज 107.8 पर। कीप लिसनिंग, हियर वी गो।

दोस्तों, हर खूबसूरत मुलाकात की तरह आज की मुलाकात भी प्यार भरी आवाज में एक मंजिल पर पहुंच गई है। दोस्तों, आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हर ट्यूसडे को हर वक्त में याद और प्यार भरे बांटने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। तो ये खूबसूरत गाने के साथ मैं आप सब से इजाजत लेती हूँ, अगली बार फिर मिलूंगी इसी समय पे, और रेडी रहना दोस्तों अपने फेवरेट गानों के साथ। तो चलिए सुनिए खूबसूरत सा गाना। मैं चलती हूँ, मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर, साइनिंग ऑफ विथ लॉट्स ऑफ लव। बी काइंड टू एवरीबडी दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय।